कहीं मैं देखूं जिधर में तेरा तसव्वुर ऐसा जमालूं कल्ब में मिसले नक्श हजर में तेरा तसव्वुर ऐसा जमालूं कल्ब में मिसले नक्श हजर में भूल सकूं ता उम्र न तुझको चाहूं बुलाना खुद भी अगर मैं भूल सकूं ता उम्र न तुझको चाहूं बुलाना खुद भी अगर मैं Oh Allah, your name must be engraved on my heart in such a manner that even if I wish to forget you, I cannot forget you. Whichever direction I see, oh Allah, I see you.

दे, मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे, तेरी मशीयत है सब पे गालिब ये हेच हैं सब मेरे इरादे, मजाल

तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। मुझे भी

रहे तो लब में सवार सब हैं प्याद मिसले गुबार में हूँ। तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक

थे जो लेने गए खुद कली में खुदा, फर्क ये है कलीम और महबूब में। थे जो लेने गए खुद कली में खुदा, फर्क ये

तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूँ।